0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है, मारो चांदी आला करिश्मा कपूर। अच्छा ओ गंदा आला शाहरुख खान। अच्छा अच्छा
0: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: सुबह सुबह
2: मंडल का।